उनका जीता समझने आवाजें थी। दिलजीत दोसांझ परम्परा टंडन और सचिव टंडन के गीतकार थे कौशल मुनीर और संगीतकार थे सचिव टंडन और परम्परा।

जीवित प्रसाद आत्मन को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है लोगों में उदारता, सहानुभूति, मदद और निस्वार्थ भाव से सेवा की भावना को मजबूत करना, बढ़ावा देना है। ये दिन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े उन लोगों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करते हैं। सभी के लिए ये दिन मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने का भी संदेश देता है। लोगों को चाहिए कि जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आए, रक्तदान के प्रति जागरूक हो और संकट के समय एक दूसरे का सहारा बने। कई बार किसी के लिए हमारी छोटी सी मदद, छोटी सी सहायता

और कहिए हेलो सर, और बताइए अपने दिन की बात।

por pandemia.

Ah, Seigneur, on écoute le mot, ça dit comme excellent. Ah, Seigneur, de vous gratter d'entrer et c'est là. Seigneur, c'est là, ce 26, c'est là, c'est le 30 septembre. Ah, c'est là, c'est mon aide à faire. Mais septembre, सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। लोगों को चाहिए कि वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें, हेलमेट सीट बेल्ट का उपयोग करें और ट्रैफिक संकेतों का पालन करें। पैदल चलते हुए इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ज़ेब्रा क्रॉसिंगों का उपयोग करना, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी

sign indicates it. Oh, I'm

मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ पर पहुंचाए।

0: tempted much, needy, each is human, human to the end.
1: आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

भविष्य में पले बढ़े प्रकाश लह रहे आम आदमी की जिंदगी को और कड़ी से दिखाए, उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही न

जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे संसार

और बनाई थी थी अभी जाओ बच कर जाते पारा लगा था चकमका रहा था जाने वाले कलाकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हो। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया, एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण कहा और सारे देश को अब

बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म चारों हरणी हिट हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जाद

बच्चे फिल्मों का इतिहास, वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं मिला। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को जाने वाले आज भी बड़े उत्साह से दिखे।

आवाज है, तो बन मिर्जा साहब

शब्द नहीं, इसकी वो कहानी है जो हर प्रेमी

और परोपकारी भावना रखें। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है।

बनाता है। बताओ जहाँ भाव केवल इंसानों के प्रति नहीं बल्कि मुख्य प्राणियों के प्रति भी दया भाव रखना मानवता का अभिन्न हिस्सा है। मानवता और दया एक ही किस्म की दो पहलू है, लेकिन हम

सर, अनुराधा पौडवाल।

आपके संस्था पर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये दिवस। आपको बता दें कि रेड क्रॉस कमेटी आई के आर की संस्था पर

हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है जिससे एनीमिया थकान और कमजोरी जैसी समस्याएं हो सकती है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य अनुवंशिक रक्त विकार थैलेसीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना रोगियों को सहायता प्रदान करना और इस बीमारी को रोकथाम के उपायों को बढ़ावा देना है। दोस्तों ये इस बीमारी से दूर रहे लोगों के जीवन में सुधार लाने और उसके प्रति सहानुभूति जुटाने के लिए समर्पित है जिसकी शुरुआत थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा की गई थी। इस वर्ष यानी साल 2026 की थीम है अब और जुटानी है। अज्ञात लोगों को ढूंढना अनदेखे लोगों का समर्थन करना ये विषय उन लोगों की पहचान करने शीघ्र निदान करने और समर्थन देने पर केंद्रित है जो अक्सर किस बीमारी से अनजान है या अपेक्षित है। दोस्तों 8 मई को थैलेसीमिया से पीड़ित सभी रोगियों और उनके माता पिता के सम्मान में मनाया जाता है आज का ये दिन जिन्होंने इस बीमारी के बावजूद जीवन की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। ये दिन उन लोगों को भी प्रोत्साहित करता है जो इस बीमारी के साथ जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस विषय पर हमने बात

Catherine Dorset, the founder of the Love and Mr. Donald Obama Post Private Circle, the majority of the United States and the Southwest. Přitom bakterie a skvělý hlas je to až tak tak alternativní tým, tak je dám to dostan ti vidlán a tímné myšlení ti konca a sami tímné nemcel se ti vidlán. Ono ne vhavlet víta a úplně se do tibian ko zimě jsem drmě, to se chtěl dunia hned vytvořil. Unky a dělatní ki atra ki šedovat se prakarita ki dorán hli, ty sádnou ki jívan ko ujádu země ki lije zimále je, lekin vaha Swami Sivanand se milkar ji atra ki ki ki उनकी शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने सन 1953 में चिन्मय मिशन की स्थापना की, जो एक वैश्विक गैर लाभकारी संस्था है जिसका उद्देश्य वेदांत का प्रसार करना है। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और आम जनता के लिए गीता और उपनिषदों को सरल अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया। उनके योगदान की बात करें तो वे चार दशकों से अधिक समय तक मानवता की सेवा में लगे रहे और उन्होंने ही अध्ययन समूहों और आश्रम स्थापित किए। स्वामी सिवानंद जी को पूज्य गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है और उनके विचार आज भी चिन्मय मिशन के माध्यम से लोगों को आत्म रूपांतरण के लिए प्रेरित करते हैं।

वेदों में मिलती है। ये केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली एक प्रार्थना है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रकृति और समय से गहरा संबंध है। विदुषी जीविता देवी हैं। श्रोताओं, बनारस घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी, जिन्हें ठुमरी की रानी कहा जाता था। आज उनकी जयंती पर हम

नगरी कैफे और टप्पा जैसे अर्थशास्त्री विधाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें वर्ष 1989 में पद्मभूषण और साल 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। विदुषी गिरिजा देवी सोनिया और बनारस घरानों की भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। उन्होंने अपने संगीत की शिक्षा पंडित सरजू प्रसाद सिंह मिश्र से ली और पारंपरिक बंदूकों को बेहद भावपूर्ण तरीके से गाया। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बनारस की गायिका की गायकी की प्रसिद्धि दिलाई। उन्हें प्यार से अप्पा जी कहा जाता है। उन्हें हम सुंदरी क्वीन व साम्राज्य के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, राग खमाज जो कि सुंदरी अंश पर आधारित है, लता मंगेशकर द्वारा गाया

si fai altre cose, no?

4-7 पर आप डायल कर सकते हैं। आधार कार्ड संबंधी शिकायत या नंबर 1947 पर शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। इस नंबर पर आधार कार्ड से संबंधित कोई भी सवाल पूछा जा सकता है।

आप शिकायत कर सकते हैं, अपनी शिकायत आप दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1930 या मोबाइल नंबर 9771432133। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लें, 9333। काफ़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने 10 मई तक बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम के कई इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 8 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 9 और 10 मई को मौसम और अधिक खराब हो सकता है। इन दिनों तेज

केंद्र के लिए जुड़ते हैं रविन्द्रनाथ प्रसाद की सेवा से और सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। सुरक्षा के लिए है तो उसी एक और से जुड़े कुछ गाने हम सुनेंगे आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में।

मिलीलीटर बॉडी में आपको फ्लू जाना चाहिए। आपको जो वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको राइट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उससे आपको आईवी लगाना पड़े या ORS आपको भी टाइम भी दिया जाए और मेडिसिन लेना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इश्यू है तो आपको मेडिकल इश्यू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसका बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर

करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहेगा।

सदस्यों ने जयंती भव्य रूप से मनाने की घोषणा की है। संघ के एक सदस्य ने

और सब में अपने साथ फोटो खिंचवाई और डांस भी किया। एक साथी हमारे ये भी लिख रही थी, शादी का सीजन चल रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं शादी में गया था, तो जहाँ भी जाता हूँ उससे और

cioè, lui rimane a tomarsi il sistema, ma c'è uno un po' di fresca, ma lì che vuol dire, non fa, ma mi viene lì, ma lì dopo arrivano a San Sofino, lì c'è la ronca, stanno a mio parte, per i vesci, ecco, c'è di che sa, c'è il mio cavallo, ma non c'è, lui si deve, organizza, cosa c'è, c'è, ora, e se lo sa, quindi se ne metti, ah, ma non si vuole iniziare, sta a fare un tassi, dire, dire, basta, dire, e c'è di che sa, per procura, per lì, ora, non so, pagati, vanta, e c'è di me, per uscire, ora, कोई दौलत हो जाएगा, कोई गीत गाएगा, कोई दुआएं देगा, कोई मस्ती करेगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है और ये बात और भी आगे बढ़ेगी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मेरी शादी को इसी महीने 28 मई को 40 साल पूरे हो जाएंगे। शादी शाम को 6:45 पर थी। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बारात में नाचना था, किंतु मेरे बड़े भैया ने बारात को शॉर्ट कट से ले जाकर मंडप में पहुंचा दी और कह रहे थे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और सब नाराज हो गए। इसलिए साथ ही हमारे लिख रहे हैं कि ये 80 के दशक की बात है। मेरे गांव में दो जुड़वा

किया है। उससे पहले अपने जीवन भर की कमाई अपने बेटे के दहेज में दे दी है। फिर हम बारात लेकर जाते हैं। एक मर्यादा सहनशीलता और अनुशासन ढंग से हमें बारात में जाना चाहिए और दोनों परिवार को प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ अभी अगला जो गाना है हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे क्या सीख देनी चाहिए, ये आप हमें लिख करके भेजिए। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि

चाहती लिखने की पुराने जमाने में मिलकर बैठकर इन्हें पंगत में खाने में तो मजा आता है, दूसरे में नहीं आता।

ना पड़े, अन्य किसी शत्रु को भी रोका जाए। मेरी प्रभु परमेश्वर की ये प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण देश में सभी समाजों में ये निर्णय लेना चाहिए। अब हम अपने देश की बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा हो जाती है। नील कमल ये गाना अब आपको सुनाते हैं, मोहम्मद रफी की आवाज़, शाही लुधियानवी की वो संगीत किसका है ये आपको बताया है। साथ ही आप हमें ये भी लिखकर भेजिए कि बेटी को विदाई कैसे।

आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज ये चीज आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं उसे एक ही झटके में स्पष्ट कर देते हैं, ये बेहतर और कौन जान सकता है उस दर्द को या उस तकलीफ को। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल की लड़कियाँ खुद वो खुद सब सीख लेती है, माँ किसी से भी मान ले तो ये जो घर आजकल सोच रहे हैं ये सोचने से।

again, maybe.

Sì, ma ti basta, perché è stato un'altra cosa. Ma è perché, da

has been divided in peace.

Okay.

0: Super DM. उसके बाद बिरन खेल में एक बड़ी सभा होने वाली थी। जगन्नाथ घाट से निकलते समय पाखुरिया घाट के पास कुछ मुसलमान अपने पालतू घोड़ों की देखभाल कर रहे थे। रविंद्रनाथ जल्दी से आगे बढ़े और उन्हें भी राखियां बांधी। वहां से आगे जाते हुए अचानक रविंद्रनाथ ने तय किया कि पुर रोड पर स्थित मस्जिद में जाकर वहां के मुसलमानों को भी राखी बांधे। कुछ लोगों को लगा अब निश्चित ही कोई दंगा फसाद होगा, परंतु रविंद्रनाथ आगे बढ़े तो मस्जिद के लोगों ने आदर पूर्वक आगे आकर हंसते हुए राखियां बंधवाई। उस दिन पूरे कलकत्ता में स्वर्ण स्तूप बंद रखा गया।
1: रविंद्रनाथ सहित सभी लोग ब्रिटेन स्क्वायर में सेंट्रल कॉलेज के मैदान पर एकत्रित हुए थे। वयोवृद्ध नेता आनंद मोहन बसु बीमार होने के बावजूद मंच पर आराम कुर्सी में बैठे थे। उनका लिखित भाषण सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने पढ़कर सुनाया। उनका घोषणा पत्र कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आशुतोष चौधरी ने पढ़ा। उसका बंगाली अनुवाद रविंद्रनाथ ठाकुर ने सबको सुनाया। आनंद मोहन बोले, समस्त बंगाल वासियों की भावनाओं की अभिनंदन करती ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बंगाल का विभाजन करने का निर्णय कि बंगाल का विभाजन रद्द होने तक बंगाल में एकता बनाए रखने के लिए समूचे बंगाल का प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो जो संभव है

और बड़ी सभा हुई। अखंड बंद भवन इस इमारत का शिलान्यास समारोह हुआ। इस सभा में भी लोगों ने स्वदेशी की शपथ।

viagem. Mas a gente tem que pensar,

di reazioni

Italy. मूल मराठी संचार मिलिंद सबले, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पाटनीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर मंदाकिनी जोशी और जयंत पाटनीकर, सहभागी कलाकार यूनुस खान, संगीतकार अजय कुमार, अपर्णा पार्थ उमरानी, देवव्रत हरखंडे और पद्मजा नामरू, तकनीकी सहयोग किरण बंद और अनुपीत गुप्ता का था, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुपीत पाठक। यह कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया है।

करके और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए, उसका आपको आईवी लगाना।

Hollywood, I'm in that room.

Thank you.

कि संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक इस पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा। देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र है उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं

तो

0: इसलिए यहाँ पे तो उसके लिए सेलेक्ट करते हैं और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में, अच्छा वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज़्यादातर।
1: अच्छा तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीज़ें लोग ज़्यादा पसंद करते हैं?
0: मोस्टली जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं और क्लोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग पसंद करते हैं। ज़्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
1: वो ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इतनी अच्छी बात है ना कि आप निकले हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल ज़माना है उसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई

0: देखिए सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए कुछ पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप ऐसे खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज़ आप मैनेज करते हैं?
1: जी सही, में आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात बिल्कुल सही,
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े कुशलता से करना पड़ता है।
0: जी
1: कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज़्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ, बस आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है वो बड़ी अच्छी लगती है। तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सोचती हूँ।
0: बात है बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे इसे पढ़ाई भी करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
0: चेस खेल के शौकीन हैं, क्या बात है। घर में खेलना चाहता है या स्कूल में सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: एलिमेंट स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
0: जी,
1: वो दोनों का कलेक्शन नेशनल्स के लिए अच्छा है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। सुनिए बताइए इस बात पर कौन सा गिफ्ट देना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे लागू की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।

0: ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पर थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी
0: जी। तो आप जॉब करती हैं?
1: जी जी, सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं तो घर से चलती हैं या कभी जाती हैं आप?
1: दुकान पे आना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती है ना?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते हैं, इसी ज्यादा 9 बजे से गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ, ये बात सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने कुछ?
1: रेडियो अभी क्या सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता है ना, संदूर लगाते देते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?

你对我喜悦你

0: उनके साथ हूँ और अभी भी सीखी रही हूँ क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो चलती रहती है। हम कभी कह नहीं सकते कि हम परांगत हो गए हैं, तो अभी उनके साथ सीख ही रही हूँ और सिखाया नहीं है ज्यादा। पर हाँ, ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ मैसेज करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ। तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
1: बहुत सुंदर बात है।
0: शायद आपको पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
1: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रहे हैं?
0: सीख रही हूँ इस वक्त, ठीक है।
1: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं या आपने कोई अपना ही तरीका अपनाया है बच्चों को?
0: मैं चाहती हूँ संगीत भी सीखती हूँ मैं, और संगीत में भी एक हम गुरु जो प्रणाली होती है शिष्य, हम उसी को फॉलो करके, तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है। ये बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है। हम कुछ भी करते हैं सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती गुरु की, कि वो जैसे बोलती थी इतनी जोर से मारो तक लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
1: बिल्कुल,
0: तो अपूर्णता है पूरा तो है, तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसे ही चाहते हैं जैसे है। कम से कम पहले थोड़ा आ जाए तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पर योग्य हो जाए तब कर सकते हैं। अभी मुझे नहीं लगता मैं उसके योग्य हूँ।
1: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है और कहीं कोई अहम या अहंकार की भावना पनप नहीं पाती।
0: हाँ हाँ, इसलिए हमारे यहाँ पे शुरू में नमस्कार किया जाता है, जिस जगह हम हैं उस जगह को अपने गुरु को सबको नमस्कार करके ही हम क्या शुरू करते हैं।
1: तो आपको छोटा सा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है कि

You can do

सिर्फ आज बस इतना ही। हमें पहले में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार।

ज्यादा तर किताबें नहीं पढ़ी हैं। मैं एक बार फिर आऊंगी फिर जाने के लिए। अरिष्टा की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था। आवाज भड़का गई थी, बदल गई थी कि कहीं उसके घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पर दोनों के बीच एक पुल बन गया। बीते हुए दर्द

0: की बोलते थे अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देख कर कुछ कहना चाहती थी तो जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन तीन बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग उसके कानों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। कहीं देखो बेटा अनुष्का, ये देखो ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध मेरे से घिर गया।
1: मैं जरूर आइए।

की आंखों में खुशियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर

आप ना गया किसी ने रेखी तक सिखवाला को जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे इस विश्वास का पैसा

मिलकर टिकुरा में चादर दीवार पर ढोल जले तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा सब कुछ अपना सा लगा। उसे भी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगे। कुछ किताबें उसके घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी। वो मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए कैंटी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितने दिनों में गई ये लड़की, सब कुछ अजीब है। सेकेंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग ने एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की थी। इतनी छोटी सी उम्र में उसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था।

था। जब घर के घर में फूलों की बरसात हुई हो वो पैदाइशी उम्र के लिए अब आगे लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई

थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की तरफ से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झिंगरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पत्ती की आवाज से गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय करुणा भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में काफी परेशानी हो रही थी। किसी इंसानी बच्चे की तरह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के चुमकों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थी जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया।

से टॉर्च निकाला और उस सुनहरे पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। सभी टॉर्च जब उठ पड़ी जहाँ कम्बल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया उस पेड़ के नीचे नजदीक गए

you come. And Lord, just full of you. चलते हुए नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत उसकी माँ ने यहाँ उठाकर इस प्यारी बच्ची को भेज दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में जब पहले मीरों ने उसे धक्कर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं माँ बन गई हूँ। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। इस बच्ची की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर मेरों के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार

जब बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया अननोन गर्ल उम्र उसके नाम की जगह खाली पर था। पहचान की जगह सवाल माँ की गोद में है। कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत।

गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज सांप गई थी, दिल तलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बच्चों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन की कागजी कार्रवाई होगी। सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। मीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था, लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह चिट्ठी रखते थे। तो क्या आवाज है? क्या खा गया बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे? ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक हल्ले कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारे, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, मेरा उस बच्चे ने कांटों की जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है।

नंगे वो फॉर्म भरा। पूरा करने के बाद वो तुम्हारी माँ को मुझे ले जाएगी। उसकी अधूरी आंखें अपनी माँ को देखने को आते होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और मीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता कि कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूँ। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता।

सामने आते ही वाले हैं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में विचार से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक सीता होती बच्ची किसी और को सौंप लगी जाए। कानून को हमें अपनी ममता से साबित करनी पड़ रही है। कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी।

सच बताएंगे। लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ।

आप जानते हैं मृतक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपने फ्रेंच पर दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सत्य से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सिली गोद ऊपर वाले ने भर दी है। आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए। यदि किसी को इस बच्ची पर दावा करना हो तो 3 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हो। मैंने घर घर के सारे में जीती रही है। कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए।

नरम नरम हो बच्ची, मेरे गोद में आएगी। मेरे गोद में पिता बनकर निहाल हो गया था।

said, this day good.

मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी भर दी हो। नीलो चुपचाप खड़ा देख रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था। उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक फुलकारी, जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन

किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। तो बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई,

figured out I can open the chat. He went to sleep, so I can see you. And it was possible. हमारी रूह में बस गई। इसकी चिंकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिखी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। बच्ची रोती, पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो बच्चे से लौट कर बच्चे की उंगली पकड़ लेता। दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है। हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें। नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। महसूस हुआ कि माँ बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी नहर फैली हुई थी। पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बरार आ गई। झूली पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश के बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

सकता कोई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं उसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने हमारी पत्नी तक छिप गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई,

的在黑暗。每家的地方会怎么解决？没有这些小朋友在里头，这个制度是哪里过去？这是什么里面黑？不是你的朋友，不是你的父母，这个是还是告诉我说的是什么？我的世界是什么？你想明白没？我是你的老师，是不是我的爸爸？哦，我的爸爸，你是老师。उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहाँ से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने माँ बनने का दावा किया है वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए।

ဒီဘက်ကခုတည်ရင်းဒီကြီးစောကြလာဟင်းစာနေတီဥစီအားဖြင့်ဘုရှိလာတဲ့စီကြီးဘုမေရီဇီဝန်ကြီးဆက်စီဘုရှိလာတီဒါရတ်ဟောလေဟောလေကြားရဲ့ဝိတီလေကင်းဘုရားကြီးကိုအာမတ်မဟိနေသာရဲ့ဝိတီဘုမေရီဒီဘုရားကြီးရှာခေဝန်ဆိုဂိတီအနုစကကခရေအာမတ်ကဆနေပတာဟိနေသလားलेकिन उसी कुछ समय के लिए ही सही उसके जाने का लम्हा सही बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस साथ जब उसके घर से उसके घर की माँ के पास ले जाया जा रहा था तब वो जैसे इस जान को जाने के लिए छो गई थी। मुझे उसकी असली माँ है, मेरी तो वो

ज्यादा बनी कुछ कहते हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्त्र बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धमकी जा गिरी। पर एक बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी छोटी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थी, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह में भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में गई थी, अच्छी अब गई थी। मैंने तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होश कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती

Hezekiah of Kodia. मैं अब तुम्हारे अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनिश्चय के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हो। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की छाया भीतर उमड़ आई। अश्रु उछल कर बह गया, जैसे अंधेरे की पत्तियां टूट कर बिखर गई हो। उसने जीवन की सांस ली और दरवाजे की तरफ रख कर देखा। वह चौखट उसकी अच्छाई से बड़ा ही गवाह थी। अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृष्टि में कहा, मैं अब किसी की छोटी से बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों ने उदासी के धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था। एक नई शुरुआत का उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह थी।

नहीं कर रहे हैं। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस से, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, उल्टी होना, हवा के केमिकल्स भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गॉश से करना चाहिए, इमीडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, यू नो शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेगनेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो जो लिक्विड हो अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्यूल जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसका आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको रही टाइम भी दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स। अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है, डेट बर्थ में हमें थोड़ा परेशान

और मैं सभी दर्शकों से इनवाइट करता हूँ कि 9 मई को शाम 7:30 बजे कॉलेज में बेंगलुरु एफसी के खिलाफ हम सपोर्ट करने की जरूरत है। और डाउनलोड निश्चित है।

vai para a nossa vida, trabalha,

दुकानदार आपने कहा हर क्यों हम बोल रहे हैं आप आज हमारे मिलते के निरुद्ध भारती केंद्र से आइए जुड़ते हैं निरुद्ध भारती के राष्ट्रीय सेवा के और सुनते हैं

tend to

também um pouco a camisa.

आने वाली 15 हिस्सा

dünyanın sahibinde.

कहीं कोई मैच चल रहा हूँ तो मैं तुम्हें तो शाम साढ़े 5 बजे बस वन में बेंगलुरु एफ सी के खिलाफ हमें सपोर्ट करने जरूर आई हूँ। टिकट डाउनलोड जिससे कि आप आएगा मैं मैं आशा बोली हूँ और मैं सभी जमशेदपुर फैंस को इन्वाइट करता हूँ कि 9 मई को शाम 7:30 बजे कांग्रेस में बेंगलुरु एफ सी के खिलाफ हम सपोर्ट करने जरूर आई हूँ। टिकट डाउन

की जो बात कर रहे हैं कनक मिश्रा की गायबीज की फिल्म है खामोशियां। गीत को लिखा है संगीत साधना ने।

दस साल जयपुर में फीचर किया तो एक लड़कपन का दौर था हमारा, लेकिन भारतीय परिवार के सदस्य राजनीति वो मेरे पूरे करियर का टर्निंग दौर था, टीम का जवाब भी, इसलिए मुझे इससे पहले से इन चीजों को हमार दे और सरकार करने का अवसर दिया। मैंने पढ़ा जाने की उड़ान भरती है और जब जी जी के साथ शुरू हो गए, किसी शायर के साथ नहीं हुआ,

by the level. मैं आशा बोली हूँ और मैं सभी जनता के इस फैसले को लेकर हम इन आईडियों को काम आसान बनाने

शामिल तो आदाब निभाते हो से इनके प्रोग्राम में आप सबका मुझे दिल से करता हूँ। श्रोताओं आज की ये दिलचस्प महफिल हमने सजाई है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की ऐसी जादुई आवाज से

bazen canım kendimi

0: जरूर उसको गंभीरता से
1: यदि आप माननीय

सिंह और साथी के शो में अपने आप सुन रहे थे कुछ नागपुरी लोकगीत। और इसके साथ ही श्रोताओं, आज का लोकरंग कार्यक्रम

Eu queria saber também, tá, cara?

ये छलांग फिल्म का गाना खुश करता हूँ। गायक है इसे गुरु रंधावा और पायल देव ने। गीत लिखा था लव रंजन और गुरु रंधावा ने और संगीत था

66,000 की जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की

ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ

0: प्रसारण सेवा से सुनते हैं कार्यक्रम जय माला।
1: हमारी सेना की वीरता और मानव क्षमता की पूरी पूरी

0: लिए
1: आपको बड़ी पे चर्चा पढ़ने के लिए उसी चर्चा के लिए और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताए। देखिए ये

0: कम 10 साल जयपुर में फीचर किया तो एक पुनरुत्थान का दौर था हमारा विविध समय की परिभाषित सदस्य राजेश रेड्डी वो मेरे पूरे करियर का फाइनिंग दौर था उसके जवाब में जो मिले मुझे उसके चरण को इन चीज़ों को समाज ने और सरकार करने का अवसर दिया मेरे पास मैंने कितनी उड़ान माफी इस करेंगे मैं जाना और जब ये भी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए कि किसी चाय के साथ नहीं हुआ
1: आज के समाज

0: आप भी डॉक्टर साहब का इंतजार कर रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या? शायद अंदर ही हैं। अंदर हैं तो आ ही जाएंगे। माफ कीजिएगा, नाचिस को वर्मा कहते और मुझे कुमार। आपके किसी साहब जाते हैं कुमार सर
1: जी?
0: अभी तक तो तो आपका पहला तजुर्बा है
1: जी
0: आपका? अभी अपनी राशि छोड़ दीजिए साहब, तजुर्बे चार गिनती पाँच। क्यों डर गए क्या? आपका कसूर नहीं है हुजूर, आपका कसूर नहीं है। जमाना फैमिली प्लानिंग का जो है, हम तो साहब लक्की प्लानिंग का है।
1: लक्की प्लानिंग?
0: जी हाँ साहब, लक्की प्लानिंग। हमारे जोशी के मुताबिक इधर साथ में साहब दादे आए और उधर हम
1: आपका लखुला।
0: बेशक बेशक, हम तो पानी में पूरा विश्वास रखते हैं।
1: मुबारक हो साहब, लगता है अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
0: कैसी बात कर रहे हैं साहब, इंतजार तो करना ही।

0: है, किसी को कंपाउंडर कभी मत बनाना, और बनाए बिना ना चले तो मैटरनिटी होम का बिल्कुल मत बनाना। दादा ये डॉक्टर है, तुम अभी क्या हो रोजी को था?
1: रोजी?
0: अभी जाता हूँ, ये चला
1: वो चला। देखो

primeiro lugar também,

people.

完了完了，来来来，哎，他是没在船里，我怎么还养着？没养着？就是这个事。

0: वो पंचतन की हूर है, मेरे मन की रानी है, जिनको घायल करने का मसाला है। तो जी उसका नाम है, काल पे की पहचान है। अरे भाग जाते इस मैटरनिटी होम के।
1: कैसे?
0: अरे मेरे ब्रादर, डॉक्टर मेहता इंदिरा पोल, मैडम मिरांडा नर्स भी मास्टर आया। भगवंशी का आज ही भाग गया, वो कई काम से। अब बताओ, एक अलग डॉक्टर, एक अलग कंपाउंड और एक अलग बुद्धि आया से कहीं मैटरनिटी होम कर सकता है?
1: बिल्कुल
0: नहीं। लेकिन नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर अब आ रहा है।
1: किसी तरह
0: डॉक्टर अभी तुम जाओ।

सबका सजाते रहता है हमारा फ्रेंड बोलता उम्मीद में दुनिया गायब।

0: मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस से, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, तो आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप लैग भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमीडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गॉस से करना चाहिए, इमीडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या ये कुछ जो भी नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमीडिएटली अपनी बॉडी को हाइड्रेट करिए। जैसे अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, तो किसी भी फॉर्म में है। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उससे आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ऑलरेडी टाइम भी दिया जाए और मेडिसिन लेना पड़े, डिपेंड से अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में, हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: और वायरल रील्स के शो में सोचो अपनी ओजी कौन है बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे महंगा ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। सुकून वाली वाइब जो सिर्फ अब सॉलिगन को पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यूनिंग करो, क्योंकि लेजेंड कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल।

0: experiencia con David. Bendiciones y amigos de David.
1: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिक्षक सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश
2: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता अल्टीमेट गोल के विकास का होना
1: परीक्षा से संबंधित

the next part, so we're going to start with the

0: गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सबके लिए बहुत आनंद है। 1950 से जो विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों के हथियार के खिलाफ विकास करेगी। ज्यादा हमारे संवाददाता से
2: संकेत मिल गया कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनावी टिकट देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल के अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार सभी आपकाल 6 तारीख हुए पश्चिम में दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, कई दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। उन्होंने राज्यपाल

0: औपचारिक नियमन पर भी किया गया है। सभी सुरक्षा के बीच दिन रात बहुत तैयारी के साथ चल रहा है। आकाशवाणी के लिए भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ को कांग्रेस IUNL

को संबल कराकर आप देश सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया।

जिससे कनेक्शनों के प्रसार प्रधानमंत्री प्रभात पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अधिक खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया।

अपनों को अपने जहन के भीतर दर्ज किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़ी कारनामे करेगा। सन 1950 प्रकाश चेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह की जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ली गई।

चाहिए बनाने के बाद प्रकाश लहरों में कुछ और चीजें बनाई और उन चीजों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे जैसे जन संसार कदम दर कदम

कहने का कहना था कि मेरा वीडियो है वो सिंगल नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज सिद्धी कौर सयाम पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई यहाँ बुलाया गया। तो जैसे नारी के साथ एक आवाज़ है तब बन मिर्जा था बुलाया उनको सुना तो आवाज़ तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। एक मिसाल ज़्यादा है आई जंजीर की झमका खुदा करें।

साथ आज हमने आपके दोस्त नेहा शर्मा बचपन का साथ छूटा तो मन ने एक आग में घेरा डाला। कोई आएगा दूर देश से लेकर सपनों का उजाला, वो आएगा तो संग लाएगा एक अनोखा जादू। उसकी नजरों के सामने न जाने कैसे होगा अपने दिल पर काबू। घूम उठेंगे रात दिन उसने आंखों से झलके, न खो जाए कहीं मुझसे मेरे ये सुहाने सपने। ये सोच कर ही तो बंद कर ली है खुशी से अपने पलके।

से बहती आई हवा लिए आई है सौंधी खुशबू उनके कदमों की। कभी सुनती हूँ आज तो कभी गूंजती है मन में एक धुन, लगता है देखे बिना ही मेरे मन में उन्हें ही लिया है तुम। सखियां और सहेलियां अब बनाने लगी हैं बातें, इधर मैंने भी हथेलियों पर सजा ली है सारी रातें। पर इस खजाने में बची है चंद रात और मुझसे भर सपना, तुम आ जाओ तो ले जाओ साथ उन्हें बनाकर दिल से अपना।

एक चोर। वो देखता है गांव की गलियां और हम निहारे बस उसकी ओर। कभी पूछते हैं उसका हाल तो कभी टटोलते हैं अपने जी को। क्या है ये वही देखा था सपनों में इसी को? होश अब दिल की पनाह मांगते हैं, जज्बात मेरे सपनों की दहलीज जानते हैं।

जाना अंदेशा था न खबर, क्या कभी परदेशी बचे हैं इस दिल के मगर। परदेशी का न कोई ठौर न ठिकाना, दो पल यहाँ रुकना और अगले पल दूसरे छोर तक जाना। कब हुआ है आसान ये दिल का लगाना, दिल के खेल का पड़ेगा अब आंखों को हिसाब ठिकाना। बीच की पलकें, बीच के जज्बात, क्या मुझ जैसे ही होंगे इसके भी हालात।

दिया दुख लेते हैं तना भी भीगे आंचल बिखरा काजल सूखी होंठ सामने तो है सब कुछ अब किसकी कैसी ओट छुप पाया है क्या चांद जानी से कभी हमारे होठों पर भी तो सजे हैं अब तक जीत रही वो हो दूर से क्या मेरी हर धड़कन पुकारती है बस उसका ही नाम सुबह शाम

कभी मनाए हम तो कभी मुस्कुराहट का आलम। उसे याद करके जितनी आंसू बहाए उसकी याद में उतने ही गीत भी गाए। शायद यही तो है प्यार का सर कि जिसके लिए बेचैन होते हैं उसको भी याद करके चैन से सोते हैं। प्यार के इस भीड़ में हम तो उसकी ही धुन में खोते हैं।

जिनसी पूर्ण कल सुबह 5 बजकर 55 मिनट पर अपनी प्रतिभा के कार्यक्रमों के साथ